0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदा दू फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबे वायर बिल मुदे की गेंग लारी वीनुए नेंगी गेंग उले कर नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही।
3: टेक के दुनिया अलगन में कोमे हफ्ता कमी कुरा दतुरता नीमे दुहा वारक कैबेज अलगन में कुरा कोमे दतुरा की मी दतुरता नीमे दुहा अलगन में ना बदलवा दोस गैक को दे दतुरता के टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा एंग बोर्ड तक उम्फिन तक उन गेंडना मुंडा बदल तक बलानुला दो कोल्लो मखी कुरम वानवरु के खमेनु मिहफ्ता है हास टेक के एम एफ ओ के खबर तंग डो हाल तिया हुन तेरी तैयार तो तैयारिया खबर फरु बताएंगे निस्ते खबर तंग डो हाल मा
4: खबर

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला ददु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबे वायरो बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है।
0: टेक टॉक्स
3: टेक्नोलॉजी के बड़े तिकुंफुनी तकुं आबद्वस्तानी आलोकन में गे दुवही दीरियोल में फासे हकुर मट्टका एकी कहला ईजाद तका ए ईजाद तकं एकी बदल तक गेन नमु टेक्टॉक्स के प्रोग्राम आय को आलोकन में मिकुरमुंगे दा दातुरता निमुमकं अन्ना वारक कैबिज एहें विम आलोकन में कुरुमा बाकियो दातुरता की हिग्याम आदि फायदा हुरी दातुरता कं हेदुमा टेक्टॉक्स के टीम मितिबी तैयार एहुं तेरिम वेस तैयार तिबेन कम उम्मीद कुरं मेदुग दतुरुं अलगुण मेन टेक्नोलॉजी या साइंस के गुरहां एकी दिमालुं तफात इजातका कुंफनतकुं इजातका गेन्नमुंदा एतके फनी बदलतके फेनी आदि अडवे सिविचे नमेस मेदुग दतुर निम्माला अंबुरा अलगुण मेंगे दुनिया दां दतुर फशन जे वगतु मिवनी जेहिफा टेक्नोलॉजी या साइंस के आलीगा इंसान होदमुं अन्न तफात कुरियरुं तका इंसानी आदका दे टेक्नोलॉजी के सबुं अन्न इंगिलाबी आ बदलतहुगे मालूमात तका एमएफओ गे खबर त होदम अन्न हफ्ता गविस अलगुन मेनाकु टेक के दुनिया दतुर कुरमा थायार बेकिन तिपेने कमा उम्मीद कुरन हुरिहा हन तिरिनवस बाजवेरी वगुत कोलक इदमुं बकिवेलन वस्सलामु अलैकुम

0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा?
2: बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
3: ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
0: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। हमारी फिल्म आर्मी वाली,
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
0: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक।
6: वो जो छपरी ने किया है ना, वो अपने को भी करने का है।
0: ये स्टंट
7: एक्शन, मेरे को नहीं करने का एक्शन।
1: गांव वालों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है।
8: अरे हमारे भारतीय फौजी आए हैं,
1: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं।
9: अपने घर
10: इसको कचरोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
11: अरे वो पुरानी चावल है।
12: मैं किस लिए फिल्म में?
13: ग्लैमर
14: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
0: कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? इनको असलियत बतानी पड़ेगी कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है।
15: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
16: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
0: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
17: पाजी, आप जाके समझाओ ना, आपका नाम तो दलेर है।
0: क्या दलेर? दलेर दलेर नाम होने से कोई दलेर नहीं हो जाता। मेरी बीबी का नाम शांति है, सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिली है, उससे बेहतर लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। तन बड़ा शौक है ना दलेर बने, जब तू बने दलेर तो मैं मेहंदी।
18: कंग्रेचुलेशन।

0: वाले मुझे भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए जंगल को पिशाच वन कहते हैं।
1: पिशाच?
0: पेशाब नहीं, पिशाच। शादी यही करेंगे, इट इज कंफर्म। मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता, वधूसुर आएगा चमगादड़ों की सेना के साथ, लोगों को मार देगा, इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता सिवा भूतों के।
2: टाइम क्या हुआ है भैया?
1: बड़ा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जाने तो पेल दूंगा जाए भी।

हम आकाश वरुण मीगे कुरिम वे तिमे नशाय तिमम मेंगे खाब फेन मिखंत वादु कुरवी एवेला मीहु दक्का उलुनु फुलोक वाहकत के खमगा मेनवी मिखंतन वे।

0: अध्ययन अध्ययन की नवफति हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक काठेस तो क्या रवि मता मन्हा मन्हा हाद देरा वे फाये
1: आहारे के वार गया कुछ जे आहारे न माला में कुरने
0: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती कहला हुरी हा कंका मंग हल्लो हो दंगे ना
1: स्पेल द टी ये
0: Mikahala kankan dimaavi ma kanta kura vidana goetan e programu nge gane.
2: Spill the tea. Hame gani divehi raja gadu.
3: Aditta dua hoge haveru. Hatra gadi fanaraga.
4: Repeat. Buddha dua hoge haveru. Hatra gadi fanaraga.
3: Adi budaspati dua hoge haveru. Fahed zahayru.
0: Engha sataristeka salis 9 kilohertz medium wave. अधे अड्डिया 9 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमें कन दिवही राज्य के अड़ों इंतजार को लवा
5: स्पिल द टी
6: अंगिनुन्ना अंगिन कुदिन्ना अनियाय लिबिदाने कमुगे बिरुवेरी कमुं एक्की बावे वमु एमीहुंगे आयला अधे मुष्टमोगे कुरियरु मा थरग्गिया मान होरिमासे केत्ताके कुरुमुगे फुर्सत इतुरु

0: mi iveni mi fakan es tengo miedo que de hama korean oi tanga mi kala mi abure hama mi haru ge fahu ge lavata bes algo menge amil la rag lavata bohte varin hi kamre lavata ei lavai hama iven duha ka bes e ba intizar kure venge ei mi fahun minukunna lavata bes hama fahu ge jilta ka besara kam daneta em bi ma mikha lavata kan edum ge frisot tu hulifa ps me ame dirko hama ati befuna nanur ko lavene diare evis te mi ge turun hama argumen mi dani program ga phone nanur kuram tine tinin hatri sumin hai mi number baarum ge frisot hulifo ti mi har anekes baare ka me ha sam waq da kala na gulifain hi vane huri assalam alaikum hala
1: ha
0: kombe fle
1: अब सतार
0: हाल की ने तो
1: हाल अंगाल
0: यकीन
1: वो यकीन है ना कुलगा लोग आ गए
0: ओ वरना आवाज़ सिफ़ा के देने इंगे
1: हाल अंगाल
0: मिहारो यकीन है जो कबा की ने मौसम
1: अलर्जी थी
0: रशु के बेटे तो वाला फोरी फुटबॉल
1: है
0: कोबा मेरा रेडियो माँ क्या री गे मैं होली हाबे फ्रेंड्स मी रेडियो ऐ वैनी आडू ऐहम भी मैं तंकोले क्या री वे थी बार को फोनी मर रेडियो गया डू
1: हाँ मालकोल लाये
0: हिंगा है मलावा जहाँ माँ दो माँ की नवाह करो तकावा
1: हाँ मेरा
0: मलाकी मेरा हेल्दुआ
1: सला
0: आ मिकोल मेसे हेल्दुआ इंगे लवा जहाँ देन वाला

0: هذا السجل لما بدأ دوم السلام ما كي قصة ما قلنا فين جيم دي الترحيب يعتبر من أستراليا من الماضي ولكن يا كي قام فين يعني أوفيشال إننا أدي ميرج كلهم ترين إربكون إربك جهة سلام كل ما منظر لكن يا كي قام كلهم تبيهونا دنوا جند دكتور مي مي ديدا نرنا ديدا مهار ولا ده جندن همين مي تفشين بيا ردة هوريها كم مي بار رانغلا فوريها مكوا مي كاتم ثاني بارا هيجام كم مي هوريها كم بس هما جيه جن قصة من هما كلهم ترين قص إربكون إربك سلام كل ده فادي أوفيشال سلام كل ده فنيمم بيا را مولي دانو ريت كو ساف كل ده منظر فنيمم ده بارا स्टेडियम का देखो लोग बड़ा बड़ा दे हम लेड स्क्रीन दे स्क्रीन बाहर टाला फेब हो हम कम अरमन स्टेडियम आप फिर ना हिसाब के दे हम खुलन तेरिंगे कहा दार का तक आदि रिप्ले में किचा चीज बड़े तिबे हो रिहा खुलन तेरे ना मैं सपोर्टर ना फिर ना हमें जाके आदि मेरे के मेरे तैयार गायगंड का हो रिहा कम नहीं फम यार मोती दे मुफ्तल ना की का दे सब्टिट्यूट रूम से मतिबे इतना नो को हमें हो रिहा मैं को सलाम को अल्लाह मंजर हो दि खास को हम होने बाटा पर बेंच में हार को मिशन लात में फिर सब्टिट्यूट रूम आदि सम में दंडो का बर हिजाम बर रीति लौटा का की का में पूरी दन में फुटबॉल आगे बड़ो ईद इंगे दम में बड़ो ईद का मेरे नीम रिगे मादमा के रेया हमें फर्स्ट मैच कोले को हम के पानी मेरे में फुटबॉल मैच बदल करने कतर आदि स्विट्जरलैंड ए की का मेरे के दम भर थिने जहर ब्राजील मोरक्को बदल करान में दिवे हिंग वरक गिना बे को हम में सपोर्ट करा एक गांव गैमस ब्राजील मेरे के थिने जे हम के इंसार वरक गिन बे फ्रॉम तिबान आलो ने हिने बे बे फ्रॉम मेहर दिस कर बा पाने में हम ने दम भर थे देवडा तो मट्टा का ये तो दुनिया के हेटी इस बदल करे स्कॉटलैंड के ऑस्ट्रेलिया दे तुर्की तुर्की में चकी सब में तेरे वरक गिना बे को बदल बेन बा में चे एक हम एमएच में होती हिंदू ने में नुए जहर ये तो हम नुए को फिर हम ना मेहर बीए फीफा वीआर रोमस और में अभी लगता था कमरे को में हो रहा कम फिर गंदे मेक्सिको मेक्सिको को इतना पैर हो गया टीम ऑफ शायद को मेरे में मिचल वीआर रेफरी ने कुछ कम नशा कर मेरा दंडा में नुकीन हो रहा मैं हम दंड तैयार करने तक नुकीन हो रहा मैं यहाँ यहाँ फिर ने अतर टीम का लिस्ट आउ मैंने फिर के मिलने हो रहा कुलन तेरी उनके फोटो जाए की फिर के मिलने हो रहा कुलन तेरी नंबर जोज जाए की हमें आए की एमी हम कुले फॉर्मेशन ना आए की 4-2-3-1 निंगे तो एमी हम का फॉर्मेशन ना की मेरे के मी मिचो अतर कुले ने 4-2-3-1 मी फॉर्मेशन देंगे और मैंने फिर के मिलने स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के मिचे बैलर फोर्थ 3-4-3 एमी हम के मी फॉर्मेशन ना की देंगे हम यह कि हो रहा कौन तेरे में नंतर क्या कि मैं हम दखा दे कम में कौन तेरे को बारों ना स्विट्जरलैंड का मैं कौन तेरे में करना मैं का जस्ट साला कोड को मैं हम के गांव को निशान का जस्ट साला करना आदि बार फोरी इंगे तो मेरे कुल में हम तैयारों में दा मंजर हो मैं बिल्कुल नहीं करने मेहर में होती कुलम फिशम हम बार जहर फिशम होती एन एम एस कुड़ कुड़ बहुत कड़े कमरे कुछ दे दे तो गांड का तीन हाथ में टेंगे इतर गंदे कहा था बड़ ईदे कमी कहा कंत दिमाग की कसी के बाक में कहूँगे तो मिहार दटे में कुलम तेरिंग में बुरा तुम अपना होगा गांड मिहार में होती और मैं ना मिहार और रेगस दरने वाले वाह के और मैं कमेंटेटर तिब्बे फल हमें मैच गणेश देर तिब्बे फल और मैं आम को तेरे तिब्बे फल दरने वाले होंगे इंदौर के घरों दंड को कब इसने वह दें एक देखरा तो बेहद यार हमने उत्तर देखो ना ये तो मैं और मैं तिब्बे फल हमें गणेश को मिल कर रहे मिहार में ती फिर मट्टा मिहार मी काउंटडाउन ये तो मी फैसे कुड़े रुकल के तेरे का जेटी में कुड़े तेरे हमें जेल में आके काउंटडाउन फर्शान दांडो मने तैयार हम वरंग अभी का तो दुहे गोते का और मना फिरना ये तो और मना फिरने का मिलने दें और उन रखने इतना मौसम कहने का मैं फिनी होने में कब बैल दर और करने का दिन वाला का है ना मैं ऐसे और मना स्क्रीन हम फिरने मुंगे बदे व्यापार रुकड़ा मैं उतना और मना फिरने का मिलने आधे मेरे के मैच तैयार होंगे तो देखो देखा मैं हूँ आधे देख आम व्यक्ति उनके लिए यहाँ रहे मैं हूँ मकाम तो होगा निवाने इतने लाभ मैं ऐसा हूँ और शिमला हवाल को दाना कुरिया गेंदे में तक
1: शुक्रिया नाइस काउंटडाउन को मैं और कारी मट कोल ले मित्र भी स्विट्जरलैंड बोलते मैं कुछ फात में तो रह कुल तेरा दिफा करी फोन वाले बोला अतर आप में देंगे हिसाब दिफा कर बस इस कुल तेरे अत लाइफ अत ला करी फोन वाले बोला मैं कुछ साफ के में दबर सेंसर का कैरी स्विस कुल तेरी मैं हाफ तेरे अत लाइफ करी है में देंगे